दोनों माँ बेटे रोजा इफ्तार रहे थे तो माँ कहती है कि बेटे अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की, रोजदार बंदों की हर जायज मुराद और दुआ